0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: So

Orsoman Kinashimi Lowly.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अब तो इवा रेडियो ना, इवा रेडियो कोई भी समय आवे, कैसा भी समय आवे, लेकिन ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी हरेक हर समय पर सदा खुश रहे। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी की खुशी गायब नहीं हो सकता है, हो सकता है हाथ उठाओ, हो सकता है। अच्छा अच्छा बाप दादा ने सबका हाथ देखा, आप हाथ उठाओ। बेफिक्र भी बात जाए, छोटी बातें भी बड़ी बातें भी आनी तो है, लेकिन ब्रह्मा कुमार और कुमारियों के लिए कोई बड़ी बात ऐसे पास हो जाएंगे जैसे खेलोगे। ऐसी हिम्मत है ना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी

ese.

的亮。

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कभी नाराज नहीं होना, ना अपने ऊपर, ना कोई आत्मा के ऊपर। खुश रहना, ऐसे तो नहीं सेंटर पर जाके कुछ Attention।

0: Sorry. एक मिनट के लिए अपने दिल से, वैसे दिल तो आपकी नहीं है, बाप को दे दी है, फिर भी दिल में एक मिनट वचन करो कि सदा फिक्र विनाशक आज्ञाकारी रहेगी।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाबू

the people.

बच्चों को याद करते हैं, ऐसे नहीं है। कि बच्चे भूल गए हैं, नहीं, एक एक बच्चा बाप

Berlin number 1.

спать, Эбби.

भी आगे के लिए आवाज फैलाने का कोई नया नया प्रोग्राम बनाओ। Oh, no.

0: अभी ऐसा समय आने वाला है जो इंद्रों को याद करेंगे। इसलिए आप अपना कार्य करते रहो, वो बेचारे आप लोग तो भाग्यवान हैं, अपना भाग्य प्राप्त हुआ उसको अनुभव कर रहे हैं। और बाप दादा भी खुश है, अव्यक्त होते हुए भी बच्चों ने पहचाना और सेवा का भाग्य भी लिया।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Yeah.

सबसे महा

Carnevale.

why you wouldn't

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

परिवर्तन का कार्य। नहीं करना है बच्चों के साथ साथ करना, ये अलौकिक साथ रहने रहते हो ना।

0: कोई और पाप बच्चों का देकर कोई भी बच्चा हो कहाँ भी है कैसा भी है लेकिन साथ है और साथ ही चलने वाले।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: झमेला मुक्त होने की विधि सबसे सहज है कि पहले स्वयं को झमेले मुक्त कर दूसरे के पीछे नहीं पड़ो। ये स्टूडेंट ऐसा है, ये साथी ऐसा है, ये सर्कमस्टेंसेस ये उसको नहीं देखो, लेकिन अपने को झमेला मुक्त करो। जहाँ झमेला होना वहाँ अपने मन को दिल को किनारे कर। आप सोचते हो ये झमेला पूरा होगा ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारी सेवा भी अच्छी, हमारी अवस्था भी अच्छी। लेकिन झमेले बाहर के समान है, क्या बाहर से मात्र टकराना है? ठीक ना क्या स्वयं किनारा कर लो या उड़ती कला से उस झमेले के बाहर के भी ऊपर चल तो बाहर भी आपको एकदम सहज अनुभव। मुझे बनना है अमृत वेले से, ये स्वयं से संकल्प करो कि मुझे झमेला मुक्त बनना है। बाकी है झमेले की दुनिया, झमेले तो आएंगे, आपकी दुनिया आपका सेवा केंद्र है, तो आपकी दुनिया ही वो है तो वही आएंगे ना। आप अमेरिका या लंदन जाएंगे क्या पेपर देने के लिए? सिंटर झमेला नहीं आवे ये नहीं सोच, झमेला मुक्त बनना है ये सोच।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जो भी बातें ऐसी आवे जो बेकार आने नहीं चाहिए, लेकिन आ जाती है क्योंकि पेपर तो होना है ना, तो क्या करेंगे अगर ऐसी कोई बात आवे तो बाप दादा को दे देना। देना आता है ना, लेना तो आता है, लेकिन देना भी आता है ना। छोटे बच्चे ना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कोई भी चीज पसंद नहीं आती है तो क्या करते हैं, मम्मी ये आप संभालो। ऐसे ही छोटे बन के बाप को दे दो, फिर अगर आवे आएगी। बाप दादा ने देखा है कि बहुत समय रखी है ना, तो छोड़ने से भी फिर आती भी है, लेकिन अगर आवे भी तो यही सोचना कि दी हुई चीज यूज की जाती है क्या। देना अर्थात आपके पास आई तो अमानत आई, आपने तो दे दी ना तो आपकी रही नहीं। अमानत में खयानत नहीं करना चाहिए, आपको मदद मिलेगी तो ये मेरी नहीं है, ये अमानत मैंने दे दी, इसमें फायदा हो जाएगा क्योंकि समय कम है और पुरुषार्थ आपको करना। जो भी आए मेरा बाबा, तो जब मेरा बाबा कहा तो और कोई मेरा है क्या, बाबा ही मेरा है ना। तो बाप पर अधिकार रख करके अमानत समझ के बाप को दे दो, अपने पास आने नहीं दे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

दृढ़ संकल्प द्वारा मेजॉरिटी पास जैसे तना के लिए अशुद्ध भोजन का संकल्प किया और प्रैक्टिकल कर रहे हो, ऐसे मन के लिए ये दृढ़ संकल्प करना है। Sir.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा, ये होमवर्क देते चाहता, ये तो मास हर एक बच्चा मन के व्यर्थ संकल्प बचत का अपने प्रत विधि बनावे। इन दो मास में हर एक अपना चार्ट रखे, व्यर्थ संकल्प के ऊपर कितना कंट्रोल किया, क्योंकि अभी समय के प्रमाण आप सभी को मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं की मनसा सेवा करने का समय होगा। इसके लिए सदा मन के ऊपर टेंशन रखना जरूरी का हुआ भी है। मन जीत जगत जीत, तो मन मना भव के वायुमंडल में मन के व्यर्थ को संपन्न करना है। कर सकते हैं, करेंगे, वो हाथ उठाओ, बाप दादा इनाम देगा। अपने रिजल्ट आप देखना। मन खुश बांटेंगे, जयपुर शहर में नंबर सभी आगे से आगे लेने का अटेंशन रखो। व्यर्थ समाप्त, संकल्प समय दोनों समाप्त। और समरथ संकल्प समरथ समय आने वाले समय में वायुमंडल में फैलेगा।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: मधुबन निवासी अर्थात गरम में मधुरता और वृत्ति में बेहद अर्थात एक्स्ट्रा गिफ्ट के अधिकारी गिफ्ट है ना, कितने निश्चिंत हो अपना ड्यूटी बजाई मौज में रहे, मधोगरी करनी है, जिज्ञासों को संभालना है, इसे तो फ्री है ना। तो मधुबन निवासियों को स्पेशल अटेंशन रखना है कि हमें चारों और याद के पावरफुल याद के वाइब्रेशन फैलाने, तो कम से कम 4 घंटे से होना तो ज्यादा चाहिए, लेकिन कम से कम 4 घंटे ऐसे समझो हम ऊंचे से ऊंचे स्थान पर बैठ विश्व को लाइट और माइट दे रहे। ये तो आपको अनुभव है अच्छी तरह से, मधुबन का वाइब्रेशन चाहे कमजोरी का चाहे पावर का दोनों ही बहुत जल्दी फैलता है, अनुभव है ना। मानवों को अनुभव है जो मधुबन में सुई भी गिरती है ना वो भी आवाज पहुंचता है। मधुबन निवासियों की तरफ सबका अटेंशन होता है, मधुबन वाले समझो विजय प्राप्त करने और कराने के निमित्त। मधुबन की महिमा कितनी सुनते हो ना, गीत भी गाते हो ना मधुबन के, तो मधुबन के दीवारों की महिमा है या मधुबन निवासियों की महिमा, किसकी महिमा है? आप सब की है ना। ऐसे अपनी जिम्मेवारी समझो, सब अपना काम किया, ड्यूटी पूरी की, ये जिम्मेवारी नहीं। मधुबन का वायुमंडल चारों और वायुमंडल बना, बाप दादा तो मधुबन निवासियों को सदा दासी बनना, अर्थात अनेक गिफ्ट के अधिकारी बनना। देखो स्थूल गिफ्ट भी बहुत मिलती है ना मधुबन को।
2: जाएंगे तो बहुत,
1: और कितना सम्मान मिलता है अगर मधुबन वाला कहाँ भी जाता है तो किस नजर से सभी देखते हैं।
2: मतलब
1: मधुबन वाला है, मधुबन वाला है। तो इतना अपना सम्मान सदा इमर्ज रखो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
3: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जब कोई अच्छा कर्म करते हो तो कर्म का फल उसी समय

भी होता है तो उसका पश्चाताप बहुत लंबा है, लेकिन अभी भी कोई व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म व्यर्थ बोल व्यर्थ संबंध संपर्क योग व्यर्थ संबंध संपर्क भी बहुत धोखा देता है। जैसा संग वैसा रंग लग जाता। कई बच्चे बड़े चतुर है, कहते हैं हम तो संग नहीं करते, लेकिन वो मेरे को नहीं छोड़ते, मैं नहीं करती वो नहीं छोड़ते, तो क्या किनारा करना नहीं आता? अगर कोई बुरी चीज दे तो आप लेते क्यों? लेने वाला नहीं लेगा तो देने वाला क्या करेगा? फेंकेगा क्या? इसलिए व्यर्थ संबंध और संपर्क भी अकाउंट खाली कर देता है। Bye.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Yes.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सिक्कियां बहुत नहीं दो कि मैं करूं, सिक्कियां देने में एक दो को भी समोचा रहे, लेकिन कि मैं के साथ सिक्कियां दो। मुरली सुनाने कोर्स कराने या जो भी आप प्रोग्राम्स चलाते हो वो भले सिक्का दो, लेकिन आपस में जब कारोबार में आते हो तो किमिया के साथ सिक्का दो। सिर्फ सिक्का नहीं दो, रहम दिल बन के सिक्का दो तो आपका रहम ऐसा काम करेगा जो दूसरे का कब सो।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: पवित्रता ही मानता है, पवित्रता ही योगी जीवन का आधार। कभी कभी बच्चे अनुभव करते हैं कि अगर चलते चलते मनसा में भी संकल्प चलती है तो कितना भी योग पावरफुल चाहती है होता है क्यों? सारा मात्र संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता है तो जहां अपवित्रता का अंश है वैसे नहीं आसन जैसे दिन और रात इकट्ठा नहीं होता, इसीलिए बाप दादा वर्तमान समय पवित्र कर्म
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आज के दिन बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा आज अपने दिल में दृढ़ता को लाके, ये दृढ़ संकल्प करो कि हमें व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय करो तो बीच बीच में समय और संकल्प व्यर्थ जाता है। बाप दादा तो सबका रजिस्टर देखते हैं ना, उसको बचाना अर्थात समापति का समय समीप
3: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: धरनी पर बैठना ये तपस्या की निशानी।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सदा कंबाइंड रहते हो ना, अकेले नहीं माया, अकेले करने की कोशिश।

सदा कंबाइन रहते हैं।

ही मर्ज हो जाता।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: तो क्यों नहीं डायरेक्ट दाता से लो।

可以不接心。那是那个人的感觉。我们说的都我们跟你们的人不得我们过去呢过去比你也是了不得लेकिन जेकर नेर स्वार्थ रहम है लगाव मुक्त रहम है कोई अलबकल की के कारण तो रहम नहीं है फिर कहेंगे बहुत अच्छी है ना बहुत अच्छा है ना इसीलिए थोड़ा थोड़ा छुट्टी नहीं है थोड़े की छुट्टी नहीं है अगर कर्मा तो ये सभी रुकावटें ये बॉडी कॉन्शियस मिले अच्छा है लेकिन बनाने वाले को अच्छा ही पड़े

0: समझा।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

そっか。

Quite.

Show.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: This is

achieved me. Achieve master.

Was?

See.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Yeah.

Oh,

सुख शांति की।

0: 是周姐，抱起来也学着外面来给拖拉拖拉过一过一个根的抱起来了你阿比斯哥
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: हाथ तो बहुत सहज उठाते हैं बाबा को पता है, हाथ उठवाए के तो बहुत प्रकार के हाथ उठेंगे, लेकिन फिर भी बाप दादा कहते हैं जिस चीकिंग से आप हाथ उठाने के लिए तैयार है, बाप दादा को पता है कितने तैयार है कौन तैयार है। अभी भी और अंतर्मुखी सूक्ष्म चेकिंग करो, अच्छा कोई को दुख नहीं दिया, लेकिन जितना सुख का खाता जमा होना चाहिए उतना हुआ, नाराज नहीं किया, राशि किया, व्यर्थ नहीं सोचा, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प व्यर्थ की जगह पर श्रेष्ठ संकल्प इतने ही जमा हुआ, सबके प्रति शुभ भावना रखी, लेकिन शुभ भावना कार्यस्थान मिला वो चाहे बदले नहीं बदले, लेकिन आप उससे संतुष्ट रहे, ऐसी सुख्यम चेकिंग फिर भी अपने आप को करो, और अगर ऐसी सुख्यम चेकिंग में पास हो बहुत अच्छे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम,
2: सत्यम शिवम

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: लेकिन थोड़ा पुरुषार्थ करके और लोग को

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Sorry.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सबके अंदर खुशी का खजाना सदा ही चेहरे और चलन में दिखाई दे। खुशी अविनाशी पाप की देन, तो अविनाशी पाप की देन को अविनाशी रखो। खुशी के लिए कहा जाता है खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। तो जिसके अंदर सदा खुशी है उनके नैनों से, चेहरे से, चलन से ऑटोमेटिक दिखाई देती बाप दादा का वरदान है कि सदा खुश रहो और सदा खुशी बांटो। क्योंकि खुशी बांटने से खुशी बढ़ेगी और कोई भी खजाना बांटने से कम होता है। लेकिन खुशी का खजाना जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो चेक करो, खुशी का खजाना सदा कायम है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: उसकी

Om Shiva. Yehi Mansa. Vamano Balki Shiva. Iska Abhyas. Abhi se karo. Jai Vani Dwara Va Saman Sampara Dwara Seva Karti Ho Lekin Ab इस मंसा सेवा का अभ्यास अति आवश्यक है। साथ साथ अभ्यास करते चलो। मनसा सेवा वही रंगत दिखाएंगी जो इस स्थापना के आत्मे पाप के मनसा द्वारा रूहानी आकर्षण ने बच्चों को आकर्षित किया और मनसा सेवा के फल स्वरूप beat.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सोचो पाप ने आप सभी से गारंटी ली है कि जो भी

दृढ़ संकल्प करते हो

से रिवाइज करो और रियलाइज करो पहुंच क्या और डबल लाइट का अनुभव किया। रियलाइजेशन

0: सामने रखो।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अपोजिशन तो होगी क्योंकि अपोजिशन ही पोजिशन तक पहुंचाती है। देखो सबसे ज्यादा अपोजिशन नंबर 1 पाई, ब्रह्मा ने पाई

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Jai Brahma।

por mí.

0: कोई मांगे नहीं मांगे। लेकिन दादा कभी ये नहीं देखता कि ये मांगे तो थे
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम।

0: समय नहीं तो ब्राह्मण जीवन से चले जाते। पुरुषार्थी है तब तो ब्राह्मण जीवन में चल रही है ना। मानो कई ऐसे कहते हैं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन दूसरे सामने विघ्न बन जाते। ये नहीं करे ना, ये बदले ना, लेकिन बाप ने पहले से ही स्लोगन दिया है, हमको बदल के उनको बदलाना है।
1: Yeah.

0: इसलिए एक तो अगर कोई नहीं बदलता है शुभ भावना रखी और कोई नहीं बदलता है तो आप अपने को बदलो। उसने ये कहा, उसने ये किया, इसीलिए मुझे भी करना पड़ा। ये नहीं, करते सिखाने के भाव से हो, लेकिन देखते कमी को। इसी
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: ये आशय है दृष्टि लेना भगवान से समर्पित वालों की, ये आशय है।
4: लेकिन दृष्टि लेनी है तो दृष्टि

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सबसे अच्छे दिन चारों।

Yeah, perfect.

Oh.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ब्रह्म जीवन की मोट सदा केयरफुल और केयरफुल मोट बदलना नहीं चाहिए। रूप में कहते हैं आज मुझे बड़ी एकांत चाहिए। क्यों चाहिए? करना सेवा या परिवार से किनारा है। और कहते हैं शांति चाहिए, एकांत चाहिए। आज मूड मेरा ऐसा है, मूड नहीं बदले करो, कारण कुछ भी हो, लेकिन आप कारण को निवारण करने वाले के कारण में आने वाले निवारण करने वाले ठेका क्या लिया है? कंट्रेस्टर होना
2: नहीं बने।
1: सबको समान बनाता ही है। यही बाप दादा का प्यार।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आज से हर एक अपने में देखे, दूसरे का नहीं देखता, दूसरे को ये बातें देखने के लिए मन की आंख बंद करना, ये आंखें बंद तो कर नहीं सकते ना, लेकिन मन की आंख दूसरा करता है या तीसरा करता है, बाप इतना भी फोर्स देके कहते हैं, अगर कोई फिल्ला महारथी भी कोई ऐसी कमजोरी करे तो भी देखने के लिए और सुनने के लिए मन को अंतर्मुखी बनाना। हंसी की बात सुनाए, बाप दादा ने आज थोड़ा स्पष्ट सुना रही है, बुरा तो नहीं लगता है? बुरा लगता है? नहीं। अच्छा, तो एक और भी स्पष्ट बात सुनाते हैं। बाप दादा ने देखा है कि मेजॉरिटी समय प्रत समय सदा ने कभी कभी महारथियों के विशेषता को कम देखते और कमजोरी को बहुत गहराई से देखते और फॉलो करते हैं, वर्णन भी करते हैं एक दो से इंतजार में रहेंगे कि महारथी बदलेंगे तो हम बदलेंगे तो धोखा खा लेंगे। इसलिए मन को ये भी बाप दादा बहुत सुनते हैं। देख लिया देख लिया। हमारी भी तो आंखें है ना, हमारे भी तो कान है ना, हम भी बहुत सुनते हैं। लेकिन महारथियों से इस बात में रीस नहीं करना, रीस करो अच्छाई की, बुराई की रीस नहीं करो, धोखा खा लेंगे। बाप को तरस पड़ता है क्योंकि महारथियों का फाउंडेशन निश्चय अचल, उसकी दुआएं एक्स्ट्रा भारतीयों को मिलती है। इसलिए कभी भी मन की आंख को इस बात के लिए नहीं खोलना, बंद रखो। मन को सुनने के बजाय अंतर्मुखी रखो। समझा?
4: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

That's it.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: पाप एक है, एक ही समय पर देते हैं, लेकिन जमा करने में तीन प्रकार के देंगे। एक बच्चे बदल सकते हैं, उसका जमा होता है। जो कार्य में नहीं लगाते तो जमा नहीं होता। तो हर एक अपने आप से पूछो कि समय पर अपने प्रति व दूसरों के प्रति कार्य में लगाते हो। जितना कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ता जाएगा, क्योंकि कार्य में लगाने से होता जाता है। तो अनुभव की अथॉरिटी एड होती जाती है। तो चेक करो अपने आप से, पूछो कि ये सारे खजाने
2: सबसे ज्यादा

0: σανέ παράσατε. Απιτιάνσε.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अभी सर्वात्माओं को आपके सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है, तो सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कोई न कोई सहयोग, चाहे मनसा का, चाहे बोल से कोई सहयोग दो, चाहे समन संपर्क से सहयोग दो। तो इस शिवरात्रि जन्म उत्सव का विशेष स्लोगन याद रखो, सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कम से कम जो भी आवे संपर्क तो संबंध में आता ही है, उसको और कोई खातरी नहीं करो, लेकिन हर एक को दिल खुश मिठाई जरूर खिलाओ। ये जो यहां भंडारे में बनती है वो नहीं, खुश कर दो। तो दिल खुश करना अर्थात दिल खुश मिठाई खिलाना। खिलाएंगे उसमें तो कोई मेहनत नहीं है, ना टाइम एक्स्ट्रा देना है, ना मेहनत है। शुभ भावना से दिल खुश मिठाई खिलाओ, आप भी खुश, वो भी खुश, और क्या चाहिए। तो खुश रहेंगे और खुशी देंगे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी अभी अभ्यास करो, एक सेकंड में निर्विकल्प निर्व्यर्थ संकल्प सेकंड में।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सिक्किया सिर्फ सिक्किया नहीं तो, अगर सिक्किया देती भी है, देने पड़ती भी है, लेकिन किमिया और सिक्किया, किमिया रूप बन के सिक्किया दो, मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो। मर्सीफुल रूप अवश्य सिक्किया का फल दिखाएंगे। देखो आजकल साइंस वाले भी पहले ऑपरेशन करते हैं, लेकिन पहले क्या करते हैं, पहले सुला देते, पीछे काटते हैं, पहले ही नहीं काटते हैं, टिंचर भी लगाते हैं, पहले फूंक देते हैं, फिर टिंचर लगाते हैं। तो आप भी पहले मर्सीफुल बनो, फिर सिक्किया दो, तो प्रभाव डालेंगे। नहीं तो क्या होता है, आप सिक्किया देने लगते हो, वो पहले ही आपसे ज्यादा सिक्किया के, तो सिक्किया सिक्किया की सिक्किया नहीं मानता। जो पॉइंट आप देंगे, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, उसके पास कट करने की 10 पॉइंट्स होंगे। इसलिए किमिया और सिक्किया साथ साथ हो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Yeti. Oh, shit.

Obama.

0: टेंशन चाहिए।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: हो सकता है सेकंड में पाश्वतानर बनेंगे ना। परमात्म स्टूडेंट है, परमात्म पढ़ाई पढ़ रही है, तो पाश्वतानर बनना ही है ना। पास मार्क्स लिया तो क्या हुआ, पास विद अनर।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: Jay Fresh.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

push.

Mickey Mouse.
scared.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा का हर एक बच्चे से बहुत बहुत बहुत प्यार, ऐसे नहीं समझे कि हमारे से बाप दादा का प्यार कम है। आप चाहे बोल भी जाओ, लेकिन बाप निरंतर हर बच्चे की माला जपते रहते, क्योंकि बाप दादा को हर बच्चे की विशेषता सदा सामने रहती। कोई भी बच्चा विशेष न हो ये नहीं है, हर बच्चा विशेष। बाप कभी एक बच्चे को भी भूलता नहीं है, तो सभी अपने को विशेष आत्मा है और विशेष कार्य के लिए निमित्त है। ऐसे समझ के आगे बढ़ते चलो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: बच्चों के दीप जगेंगे, कोई भी सफलता होती है तो दीपक तो जगाती है ना। आप विश्व में
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

और संतुष्ट करना। कई बच्चे कहते हैं संतुष्ट रहना तो सहज है, लेकिन संतुष्ट करना

आज संकल्प तो चलता है ना, जो बाप दादा ने शुभ भावना शुभ

अपने आप को इस मंत्र में स्मृति स्वरूप रखो तो आपके व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। अपने को जानते हुए भी कि ये ऐसा है ये वैसा है, लेकिन अपने को सदा न्यारा, उसके वाइब्रेशन से न्यारा और बाप का प्यारा, उस

0: उस आत्मा के भी कल्याण के व्रत, शुभ भावना, शुभ कामना।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: तो आज के दिन फरश को

सकते हो, हाथ उठाओ, देनी पड़ेगी। हाथ उठाना तो बहुत सहज है, लेकिन मन का हाथ उठाना उठा रही है, पुराने संस्कार को सदा के लिए हाथ उठा रहे हैं। फिर से

सभी बच्चों को, चाहे यहाँ सन्मुख बैठे हैं चाहे दूर बैठे हैं।

tetapi bab tetapi mane man me dance kare eva bajiva.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सबसे पहला खजाना है ज्ञान का खजाना। जिस ज्ञान के खजाने से इस समय भी आप सभी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हैं। जीवन में रहते पुरानी दुनिया में रहते तमोगुणी वायुमंडल में रहते ज्ञान के खजाने के आधार से इन सब वायुमंडल वाइब्रेशन से न्यारे मुक्तो कमल पुष्प समान न्यारे मुक्त आत्माए दुख से चिंताओं से अशांति से मुक्त हो जीवन में रहते बुराइयों के बंधनों से मुक्त हो व्यर्थ संकल्पों के तूफान से मुक्त हो। जीवन मुक्ति इस ज्ञान के खजाने का फल प्राप्ति चाहे व्यर्थ संकल्प आने की कोशिश करते हैं नेगेटिव भी आते हैं, लेकिन ज्ञान अर्थात समझ कि व्यर्थ संकल्प व नेगेटिव संकल्प का काम है आना और आप ज्ञानी तो आत्माओं का काम है इनसे मुक्त न्यारी और बाप की प्यारी रहना। तो चेक करो ज्ञान का खजाना प्राप्त है संपन्न है या कम है। अगर कम है तो उसको जमा करो, खाली नहीं रहे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा सदा कहते हैं कि फॉरेनर्स इस जन्म के फॉरेनर्स है, लेकिन अनेक जन्म के ब्राह्मण परिवार के हैं। अगर आप लोग विदेशी नहीं बनते तो विदेश के बिना बिना देशों की सेवा कैसे होती। अगर आप विदेश के रूप में नहीं आते तो बाप दादा को सब देशों की भाषा का यहाँ क्लास रखने पड़ते, तैयार करने पड़ते। तो आप लोग जो बिना बिना देश में गए हो वो सेवा के प्रत गए। समझा? समझ में आया क्यों गए हो? ओरिजिनल आप ब्राह्मण आत्माएं, विदेशी आत्माएं नहीं। बिना बिना विश्व की सेवा के लिए देखो, भारत में भी हर भाषा के बच्चे आए हैं और सेवा कर रहे हैं। नहीं तो पहले एक ही ग्रुप था, सिंध का ग्रुप, और धीरे धीरे बिना बिना देश का, चाहे भारत के चाहे विदेश के, आते रहे और बढ़ते रहे। ये भी ड्रामा में बना हुआ खेल। वैसे भी पहले जड़ में थोड़ी होती है, फिर धीरे धीरे तना और शाखें निकलती, तो फाउंडेशन बना सिंध के देश के निमित्त। फिर धीरे धीरे फिर क्या बढ़ता गया, भाषाएं और देश की शाखाएं। आप शाखाओं में नहीं हो, आप तो बाप के साथ।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: मन में बहुत कुछ आपके भरा हुआ है, बाप दादा के पास मन को देखने का टीवी भी है, या ये टीवी तो सिर्फ शक्ति हो जाते हैं। अभी कर्म तक लाओ, वाणी तक लाओ, चेहरे तक लाओ, चलन में लाओ, तभी सभी कहेंगे जो आपका एक गीत है ना, शक्तियां आ गई। सब शिव की शक्तियां है, पांडव भी शक्तियां हो, फिर शक्तियां शिव पाप को प्रतिज्ञा करें। छोटे छोटे खेल बाल बंद करो, अपमान परस्त स्थिति को इमर्ज करो। बाप दादा सभी बच्चों को कोई भी बात आवे तो ये स्लोगन याद रखना, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Yeah.

खुशी होती है।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अभी सेवा और स्व दोनों का बैलेंस ऐसा सेवा स्थान बनाओ जो सबके आगे एक एग्जाम्पल हो। जैसे म्यूजियम होता है ना, तो सब एड्रेस देते हैं ना, शहर में कहाँ भी जाओ तो एड्रेस देते हैं, यहाँ जाओ यहाँ जाओ। ऐसे जिसको शांति चाहिए, हिम्मत चाहिए, वो मगुस्सा चाहिए, वो आपके एड्रेस में पहुंचे, फैल जावे। अगर शांति का वाइब्रेशन लेना हो तो यहाँ जाओ, अगर हिम्मत पढ़नी हो तो यहाँ जाओ। ऐसे स्पेशल बनाओ, ठीक है ना। बाकी तो सब म्यूजियम तो जाता, अध्यात्मक म्यूजियम भी है, भाषण भी है, सब कुछ है, लेकिन कोई विशेषता ऐसी स्थान की बनाओ जो भ्रमणों में और पैर में भी ये प्रसिद्ध हो जाए कि ये चाहिए तो यहाँ जाओ। क्योंकि आजकल लोगों को सुनने की आदत तो है लेकिन अनुभव करने की आदत नहीं। तो अगर अनुभव करने जाए तो आपके पास ये प्रसिद्ध हो जाए कि अगर आपको अनुभव करना है तो ये एड्रेस।
3: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने एक बारी सभी सेंटर्स का चक्कर लगाया, पता है क्या देखा? कमी किस बात की है तो यही दिखाई दिया कि एक सेकंड में परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाना इसकी कमी है। जब तक फुल स्टॉप लगाओ तब तक पता नहीं क्या क्या हो जाता। बाप दादा ने सुनाया कि एक लास्ट टाइम की लास्ट एक घड़ी होगी जिसमें फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा।

दूसरों की बातें याद करते, ये क्यों होता, ये क्या होता, इसमें आश्चर्य की मात्रा लगा जाती, तो फुल स्टॉप नहीं लगता। लेकिन कमा आश्चर्य की निशानी, और क्यों क्वेश्चन कि क्यों लग जाती। तो इसको चेक करना, अगर फुल स्टॉप लगाने की आदत नहीं होगी तो अंत मते सोकते श्रेष्ठ नहीं होगी, ऊंची नहीं होगी। इसलिए

0: stop. सीकर में लगाने का बार बार अभ्यास करो. अभी फास्ट तीव्र प्रशरत करो. अभी ढीला ढाला प्रशरत सफलता नहीं दिला सके.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो. सत्यम शिवम सुंदरम. सत्यम शिवम सुंदरम.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सदा के लिए नहीं कर, दवाई खाएंगे। थे तो बीमारी हटेगी, दवाई बंद तो बीमारी फिर से आ जाती। ऐसी दवाई तो जो बीमारी का नाम निशान नहीं हो, वो है मेडिटेशन।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा यही इशारा देते हैं, कोई भी समस्या को सामना करने के लिए सहज विधि है। पहले एकाग्रता की शक्ति, मन एकाग्र हो जाए। एकाग्रता की शक्ति निर्णय बहुत अच्छा करती, इसीलिए देखो कोर्ट में भी तराजू दिखाती है। निर्णय की निशानी इसलिए दिखाती है, एकाग्र कांटा हो जाता है, तो कोई भी समस्या को जिस समय चारों ओर हलचल हो उस समय अगर मन की एकाग्रता की शक्ति जहां मन को चाहो वहां एकाग्र हो जाए, निर्णय हो जाए किस परिस्थिति में कौन सी शक्ति कार्य में लाए। एकाग्रता की शक्ति दृढ़ता सुनाई दिलाती और दृढ़ता सफलता की चाबी। ऐसे अपने को एक एग्जाम्पल बना के औरों को प्रेरणा देते रहो, ठीक है ना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: व्यक्ति बिक जाए मट्टी है ना, मट्टी मट्टी में मिल जाती, देखने में आपको बहुत सुंदर आता है, चाहे सूरत से चाहे
2: अज्ञान में होती है क्या? ईश्वरी

0: Iran gonna be Kian Parna Hibar to Kian Parni Wala Kon to Kiskriti Noi देवता अच्छा लगता या दाता अच्छा लगता तो देवता के पीछे क्यों पड़ते।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Ritmo.

മനസ്സശക്തി ദ്വാരാ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ചെയ്യുക.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आजकल के लोग एक तरफ What?

के बाद अनुभव किया।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: Knowledge.

Missy.

ऐसे

Sí.

भी बात में शराबी मुख से नहीं।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: खुश रहो, कभी कभी कोई बच्चों का चेहरा बड़ा सोच विचार में थोड़ा ज्यादा गंभीर दिखाई दे, नाचो गाओ, आपके ब्रह्मांड जीवन है, खुशी में नाचने की और अपने भाग्य
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: Olsam aşçıya vato gene. Ve deyi sahiban. Soço. Leyen. Soca. Blen. Blen banalya. Orsi.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: बातें नहीं सोचो, ये कैसे होगा, ये क्या होगा, आप अपने को।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: रोज अमृत वेले जी करो, मेरे पुरुषार्थ की गति तीव्र है या चल रहे है, पहुंची जाएंगे हो ही जाएगा, ऐसे संकल्प तो नहीं रखते। तीव्र पुरुषार्थ ही बनो, पुरुषार्थ ही तो है, लेकिन चेक करो तीव्र पुरुषार्थ ही है। बाप दादा को प्रिय कौन लगते हैं? तीव्र पुरुषार्थ ही तो हर एक बच्चे को क्या बनना है, तीव्र पुरुषार्थ ही बनना है। हाथ उठाओ, बनना है, बनना है या बन के चल रहे हो? ये लक्ष्य कभी भी नहीं छोड़ना, तीव्र पुरुषार्थ ही रहना ही है, औरों को भी साथ देना है। ये लक्ष्य है, जिसके दिल में ये लक्ष्य है वो हाथ उठाओ। अच्छा, हाथ तो सभी उठाते। चलो, थोड़ा ठंडा है तो दीवार कर देना, क्योंकि दिन प्रतिदिन माया भी अपना काम करती रहती, लेकिन आप सब बच्चे कौन हो? आपका टाइटल क्या है? मायाजीत? कौन मायाजीत बनने वाले हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा, सभी ने हाथ उठाए। बाप दादा को खुशी होती है कि हिम्मत तो है, हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप तो है। हिम्मत नहीं हारना, बाप दादा का सहयोग पहले, हिम्मत हारा तो सब गया। हिम्मत है तो हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कहीं जब का थोड़ी बहुत हलचल होती है ना तो घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। गहराई में नहीं जाते, घबरा जाते। अगर गहराई में जाए ना तो कभी भी कितना भी बड़ा हलचल वाला पेपर हो या बात हो, लेकिन गहराई में जाने वाले जैसे समुद्र होता है ना, तो समुद्र के तले में जाने वाले बहुत माल लेके आते हैं। ऊपर ऊपर वाले नहीं, ऊपर वालों को तो मछली मिलेंगी, लेकिन गहराई में जाने वाले बहुत चीजें ले आते। तो यहाँ भी कोई भी बात होवे, बातें तो आएंगी। ये बाप दादा नहीं कहेगा बातें आएंगी नहीं। जितना आगे जाएंगे उतने सूखियम बातें आएंगी, क्योंकि पास में दानर होना है ना। घबराओ नहीं, बाप दादा को उस समय भूल जाते हो, अकेले बन जाते हो ना, तो छोटी बात भी बड़ी बात लगती है। बाप दादा कंबाइंड है, कंबाइंड रखो, अनुभव करो तो देखो बाहर भी रुई बन जाए। कोई बड़ी बात नहीं है। कितने बारी पास हुए हो, कितने क्लब पास हुए हो पता है? है नशा। अनेक बार मैं ही पास हुआ हूं। अभी रिपीट करना है, नई बात नहीं है, सिर्फ रिपीट करना है। स्मृति रखो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ब्रह्मा बाप ने हर बच्चे प्रेत चाहे और क्यों

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अच्छा वैज्ञानिक, बहुत अच्छा अनुभव है। जैसे साइंस महीना होती जाती है, साइंस अति सूक्ष्म महीन होती जाती, ऐसे आप साइलेंस और साइंस दोनों के अनुभवी हो, तो अपने हम जिन्स को साइलेंस का महत्व सुनाओ, उनका भी कल्याण करो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Sarva

personality. Kitni vishesh rahi. Sa.

Yeah.

0: संगम पर भी सारे विश्व के अंदर प्योरिटी की रॉयलिटी ब्रह्मांड जीवन का आधार प्योरिटी नहीं तो प्रभु प्यार का अनुभव भी नहीं। सर्व परमात्म प्राप्तियों का अनुभव नहीं। ब्राह्मण जीवन की पर्सनल
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सभी बच्चों को

ऐसे चारों ओर के।

0: cosa, Teo. Easy practice. So you have me.
1: मन बुद्धि को

Bill.

ब्रह्मा मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति में हूं। इस मास्टर शक्तिवान

sea practice. Szeretetbe. Csak visszamemelé. Mira, mano.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अभी किसमें होशियार बनेंगे? मनसा शिवम, नंबर आगे लेना, पीछे नहीं रहना। इसमें कोई कारण नहीं, समय नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता, तबीयत नहीं चलती, पूछा नहीं गया, ये कुछ नहीं, सब कर सकते। बच्चों ने खेल खेला था ना, दौड़ लगा देखा खेला था ना, अभी इसमें दौड़ लगाना, मनसा सेवा में दौड़ लगा। अभी टीचर्स को मनसा सेवा में रेस करनी है, लेकिन ऐसे नहीं करना कि सारा दिन बैठ जाओ मैं मनसा सेवा करने।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: ध्यान बताइए, जब साथ रहेंगे साथ चलेंगे तो साथ में सेवा के साथी भी तो ना मदद मिल जाएंगे, पढ़ना तो पड़ेगा आपको, अभी सिर्फ चलते बन जाओ। आप सोचते हो ना हमें कल पहले भी थे अभी भी है और हर कल हम बनना ही है, ये तो पक्का है ना कि दो साल बनेंगे तीसरे साल जाएंगे, ऐसे तो नहीं होंगे। तो सदा याद रखो हमें निमित्त है, हमें कोटो में कोई कोई में कोई है, कोटो में कोई तो आएंगे लेकिन आप कोई में कोई।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कहीं कहते हैं कि योग क्या, बस बहुत अच्छा लगता है, बस अच्छा है, ज्ञान अच्छा है, कहेंगे ज्ञान यूज करते हो अच्छा है वो तो ठीक है, लेकिन कर्म मिलाते हो ज्ञान माना आत्मा परमात्मा ड्रामा कहना नहीं, ज्ञान का अर्थ है समझ, समझता जैसा समय होता है वैसे समझदारी से सदा सफल होता है। समझदार की निशानी है कभी धोखा नहीं खाना, ये ज्ञान की निशानी और योगी निशानी है कि सदा क्लीन और क्लियर बुद्धि, क्लीन भी हो और क्लियर भी हो, योगी कभी नहीं कहेगा पता नहीं पता नहीं, उनकी बुद्धि सदा ही क्लियर और धारणा स्वरूप की निशानी है, सदा स्वयं भी लाइट, कितने भी जिम्मेवारी हो लेकिन धारणा मुहूर्त सदा डबल लाइट, चाहे मेला हो चाहे जमेला दोनों में डबल लाइट और सेवादारी की निशानी है सदा निमित्त और निर्माण भाव। तो ये सभी अपने में चेक करो, कहने में तो सभी कहते हो ना कि चार सब

Gott dich.

Thank you.

sapete che

देखो

zapaście. A to me dijo. Naked.

0: सब भ्रष्ट है। कितना बड़ा भाग्य है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अब ये दो बातें दुनिया में विकसित होनी चाहिए। एक गीता का भगवान और दूसरा सर्वव्यापी नहीं, ये दो बातें धीरे धीरे विकसित हो जाए। जैसे अभी ब्रह्मा कुमारियों के बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। जैसे अभी दुनिया में ये प्रसिद्ध हो गई है कि वास्तव में ब्रह्मा कुमारिया मन की शांति, मन की उलझन मेडिटेशन से दूर कर रही है। ये धीरे धीरे अभी कोई भी मन में अशांति वाला समझता है कि ब्रह्मा कुमारियों के पास इसका साधन अच्छा है, धीरे धीरे प्रसिद्ध होता जा रहा है। ऐसे ये दो बातें अथॉरिटी वालों के पास प्रसिद्ध हो जाए। एक दो अगर सेटिस्फाई हो जाए और ऐसा बेफिक्र होगे कहे कि ये बात समझने की है, तो धीरे धीरे ये बात फैलती जाए। भाषण तो अभी कहते ही कि ब्रह्मा कुमारियों का भाषण पॉइंट टू पॉइंट होते सुनने आते हैं, समझने लगे, लेकिन मुख्य बात अभी इसका आवाज होना चाहिए। ये तो विशेष बातें हैं। इससे ये सिद्ध हो सकते हैं कि इनको ये सिखाने वाला कौन, तो ऐसा पुरुषार्थ करो कोई अथॉरिटी है जो इन्हों को सिखाने वाली।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

falta casa.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा यही चाहते हैं, अब थोड़े समय में के लिए पुरुषार्थ के प्रारंभ स्वरूप बन जाओ। बन सकती है कि पुरुषार्थ की मेहनत अच्छी लगती है, बनेंगे प्रारब्ध वाले बनेंगे। हाथ

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: Está

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: रावण की चीज को मेरा मेरा कहते हो ना, इसलिए जाती नहीं है। पर चीज को अपना बना के रखा है ना, कोई पराई चीज को अपने पास संभाल के रखे, छिपा के रखे, अच्छा माना जाता है। तो रावण की नेचर, पराई नेचर, उसको मेरा क्यों कहते हो? बड़े फखर से कहते हैं, मेरा दोष नहीं है, मेरी नेचर है। बाप दादा को भी रिझाने की कोशिश करते हैं। अभी ये समापति समारोह करेंगे, करेंगे, करेंगे। देखो, दिल से कहो, मन से करो, जहां मन होगा ना वहां सब कुछ हो जाएगा। मन से मानो कि ये मेरी नेचर नहीं है, ये दूसरी की चीज है, वो नहीं रखनी है। आप तो मर्जीवा बन गए ना, आपकी भ्रमण नेचर है या पुरानी नेचर है? तो समझा बाप दादा क्या चाहते।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ब्रह्मा बाप को देखा, कर्म करते कर्म के बंधन से न्यारे, जीवन में होते कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा ने देखा है कई बच्चे माया को दूर से भगाते नहीं, जाती

से नहीं भगाते, तो माया की भी आदत पड़ जाती है, क्योंकि वो जान जाती है कि यहां हमको बैठने देंगे some

Wasser.

Kiss me.

ऐसे समय के लिए एवर रेडी।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अब छोटी छोटी बातों में टाइम नहीं लगा, जैसे देखो मक्खी आती है, मच्छर आता है, डरने देते हो, फौरन उड़ा देते कि बैठने देंगे। अच्छा मच्छर पले आओ, कोई भी समस्या क्या है, मच्छर और मक्खी तो है, फौरन भगाओ, उनो का काम है आना, माया आने का काम नहीं छोड़ती, लेकिन ब्रह्मन भगाने के काम में कभी कभी थोड़ी देरी लगा देते, माया भी सुन रही है, तो ये करेंगी ना। लेकिन आप तो माया

0: आप याद करो मेरा काम भगाना है, वो भी आपको सिखलाती है कि मैं आना नहीं छोड़ूंगी, आप विजय पाना नहीं छोड़ो। तो क्या अभी छोटे छोटे मच्छर और मक्खी को आने नहीं देना? स्थिति के आगे ये छोटी छोटी चीजें क्या है?
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जय छोटा।

charol. Sant d'esponja. Ferà qui se me va di puri. Ese naio que chot. किसी को भी बेच के कम से कम पता तो पड़े कि हम सब का बाप आया है। अचानक आना है, पता के नहीं आएगा। अपना चारों ओर संदेश देने का कर्तव्य अवश्य देखो।
अचानक

0: इशारा दे रही है कि अपने एरिया को चेक करो रायगढ़ के पड़ोसी से। उस द्वारा कराओ। लेकिन
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: जीवन में सदा।
1: बाप दादा, इस वर्ष में जो इस समय तक किया उसमें संतुष्ट है, आफरीन भी देते हैं। लेकिन अभी सेवा में अन्नपूर्ति कराना क्षमा के ऊपर परवाने बनाना ऐसे अनुभवी परवाने तैयार कर सहयोगी बनाए है, उसकी मुबारक है और बनाओ। Yes। See.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा ने ये भी देखा है कि कोई कोई बच्चे छोटी सी बात को विस्तार बहुत करते हैं। इसमें क्या होता है जो ज्यादा बोलते हैं ना, तो जैसे विस्तार वृक्ष का होता है ना, तो बीज उसमें छिप जाते हैं। ऐसे वो समझते ऐसे है कि हम विस्तार कर रहे हैं समझाने के लिए, लेकिन विस्तार में जो बात आप समझाने चाहते हैं ना, उसका सार छिप जाता है। और बोल वाणी की भी एनर्जी होती है, जो फिस्ट बोल होते हैं तो वाणी की एनर्जी कम हो जाती है। दिमाग की एनर्जी भी ज्यादा बोलने वाले की कम हो जाती है। शॉर्ट और स्वीट, ये दोनों शब्द याद रखो। और कोई सुनाता है ना तो उसको तो कह देती है मेरे को टाइम नहीं है इतना सुनने का, लेकिन जब खुद सुनाती है तो टाइम भूल जाते हैं। इसलिए अपने किसानों का स्टॉक जमा करो, संकल्प का खजाना जमा करो, बोल का खजाना जमा करो, शक्तियों का खजाना जमा करो, समय का खजाना जमा करो, गुणों का खजाना जमा करो।
4: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Talkie.

लाने के बिना नहीं मनाते। अपवित्रता को जलाना योग के अग्नि द्वारा, अपवित्रता को जलाते हो उसका यादगार वो आग में जलाते और जलाने के बाद जब पवित्र बनते हैं तो खुशियों में मनाते पवित्र जलाते हो।

Сърва атма огибрид. Ще във вам.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: प्योरिटी की वृत्ति है शुभ भावना, शुभ कामना, कोई कैसा भी हो, लेकिन पवित्र वृत्ति अर्थात शुभ भावना, शुभ कामना और पवित्र दृष्टि अर्थात सदा हर एक को आत्मक रूप में देखना व फ्रिश्ता रूप में देखना, वृत्ति दृष्टि और तीसरा है कृति अर्थात कर्म में। तो कर्म में भी सदा हर आत्मा को सुख देना और सुख लेना, ये है प्योरिटी की निशानी। वृत्ति दृष्टि और कृति तीनों में ये धारणा हो, कोई क्या भी करता है दुख भी देता है, इंसल्ट भी करता है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? क्या दुख देने वाले को फॉलो करना है या बाप दादा को फॉलो करना है? फॉलो फादर है ना। तो ब्रह्मा बाप ने सुख दिया, सुख दिया ना, तो आप मास्टर ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मात्माओं को क्या करना?
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज के स्मृति दिवस पर एक एक बच्चे को स्मृति चाहिए इस दिन की, तो सभी बच्चे इस स्मृति दिवस पर आज अपने में कोई न कोई विशेषता ध्यान में रख और अपने में धारण करे विशेषता दिन में विशेषता धारण करे। जो भी अपने में कमी समझते हो उस कमी को आज के दिन समाप्त कर कोई न कोई उमंग उत्साह की धारणा का संकल्प करना। सोने के पहले ये संकल्प करके सोना और अमृत वेले उसी को दोहरा कर हमेशा के लिए अटेंशन दे दे दे दे पाप समान बन जाना है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी आप सभी भी अपना चित्र खींचो, आते हैं चित्र खींचने आते हैं ना, श्रेष्ठ संग

सभी ड्रिल करो, माइंड ड्रिल, घर में इंद्रियों की ड्रिल नहीं, मन की ड्रिल करो। रेडी, ड्रिल करने के लिए रेडी है, कांधे लाओ। Sorry.

रचना इस फिरके के चर में

See.

0: प्यारी आत्माओं,
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा सभी बच्चों को कहते हैं कि आप सभी आप और बाप कंबाइंड है, तो कंबाइंड है तो सिंगल हुए क्या? लोग के जीवन समझते हैं कभी कभी।

0: सबका साथी और अविनाशी साथ निभाने वाले बाबा कहा और बाबा हाजिर है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा सभी बच्चों से खुश है, लेकिन रोज अपने को रात्रि को बाप दादा का याद प्यार देना और मुबारक देना। बाप दादा की मुबारक रोज अपने को देना बाप दादा देता है, और आप अपने आप को देना। बाप दादा छोड़ते नहीं है, चाहे इंडिया है चाहे विदेश। जैसे अमृत वेले चक्कर

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अगर पाप समझ के कनेक्शन जोड़ा तो एक दिन में भी वर्षा ले सकता। अच्छा है, कोई शक्ति है, समझ में तो आता है, ऐसा नहीं। वर्षे के अधिकारी बच्चे होते हैं, समझने वाले देखने वाले नहीं। अगर एक दिन में भी पाप माना दिल से तो वर्षे के अधिकारी बन सकते।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज बाप दादा ने देखा अमृत वेले चक्कर लगाया, चारों ओर का चक्कर लगाया, चाहे विदेश चाहे देश, बाप दादा को चक्कर लगाने में समय नहीं लगता। तो क्या देखा, कोई थे क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति अनुभव की है, अनुभवी स्वरूप, सर्वशक्तियों के अनुभवी स्वरूप। मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्ति स्वरूप। तो अनुभवी स्वरूप बनने में कुछ कमी दिखाई, यही चाहते हिस्सा

c'est pas dada. Pra papapá coteica. Este स्वरूप की स्थिति

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ए ब्रको, सिर्फ कमेंट्री से योग नहीं कराओ, अनुभव कराओ। अनुभव पक्का बनाती है। एक ही समय पर हर सेंटर पर एक ही प्रोग्राम और हर एक सेंटर अनुभव क्या किया वो रिजल्ट लिखे। चाहे 3 दिन का प्रोग्राम कराओ, चाहे 1 दिन का कराओ, लेकिन इकट्ठा चारों और जैसे थर्ड संडे सभी जगह रखते हो ना, अभी अनुभव कराने का प्रोग्राम चारों और एक समय लक्ष्य एक, समय एक और चारों और देश वाले भी समझेंगे कि ये विश्व में पीस के लिए इतना इकट्ठा एक समय प्रोग्राम रखे। लक्ष्य रखो अनुभव बनाने का। सब सुन के चले नहीं जाए, कुछ अनुभव करके आप लोग भी बाप के बने कैसे, कुछ ना कुछ अनुभव किया, चाहे प्यार का, चाहे टोली खा के भी प्यार का अनुभव किया, बहनों के व्यवहार का अनुभव किया, बहनों के मुस्कुराने का, आचान करने का अनुभव किया, कुछ ना कुछ अनुभव किया तभी बने हो। तो ऐसे अनुभवी बनाओ। अभी अखंड सेवा करो, बहुत सेवा रही।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: पहले सोच रहे थे 99 में क्या होगा, हुआ कुछ हुआ, फरवरी तो आ गई, अगर होगा भी तो आपको क्या, आपको नुकसान है बैठ के देखते हो तो ये भी

Esiste Dival Eco? Él te

सर्वशक्तिवान आत्माएं खेल देखते अपन ने विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहेंगे। अगर समय अनुसार

Ivan's good neighbor now. Sainsky Sadan. Baby, what do we mean?

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सेवा तो करते हैं, लेकिन सेवा में साथ साथ अपने में और साथियों में संतुष्टता क्यों सेवा का फल है। संतुष्टता व खुशी तो चेक करो, सेवा तो की लेकिन पहले भी सुनाया कि सेवा की खुशी तब होती है जब स्वयं साथी और वायुमंडल जन सपे संतुष्टता के वाइब्रेशन में सेवा की सफलता की तीन बातें विशेष सुनाई थी, याद होंगी। पहला नंबर सेवा अर्थात निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भावना, तीसरा निर्मल वाणी। भाव भावना और स्वभाव ये सभी साथ साथ सेवा में है तो स्वयं भी संतुष्ट और साथी भी संतुष्ट और जिनों की सेवा की वो भी आगे बढ़ते जाए। निमित्त भाव वाले भाव के तरफ संबंध जोड़ेंगे। अगर निमित्त भाव नहीं तो भाव के नजदीक इतने नहीं आएंगे। तो जब भी सेवा करते हो तो ये चेक करो कि भाव भावना और स्वभाव ठीक रहा। और आजकल

0: चाहे कहाँ भी सेवा के लिए जाते हो तो ये चेक करो कि साथी संतुष्ट रहे, क्योंकि सेवा की सफलता है संतुष्टता का फल प्राप्त हो, खुशी प्राप्त हो।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सभी पूछते हैं आगे क्या करना है, बाप दादा का संकल्प है के अभी ज्यादा में ज्यादा बने बनाई स्टेज पर चांस लो और को सहयोगी बनाओ और आप सकाश दो। सत्तर साल अपने हिम्मत से किया, अब दूसरों का भाग्य बनाओ। भाग्य बनाने का चांस दोनों को, भाग्य बनाने के लिए सिर्फ स्वयं सकाश कौन सी दो, एक तो रहम दिल बहुत बनो, किम्या के बाप के साथी बनो, शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल ऐसा बनाओ जो स्वयं ऑफर करे, ऐसे ऑफर चारों ओर आवे, हर जोन में ऑफर आवे, ये सुतई प्रसिद्ध हो जाएगा। अभी उन्हों का भी सहयोगी सनई बनने का चांस दो, उन्हों को भी चांस दो क्योंकि बाप दादा ने देखा है कि सनई सहयोगी हर जोन में यथाशक्ति है, लेकिन उन्हों को सेवा के साथी बनाओ, उन्हों को भी उमंग उत्साह के पंख दो, है चारों ओर, क्योंकि बाप दादा चक्कर तो लगाते हैं ना, तो अपने बच्चों को भी देखते हैं और सनई सहयोगी नजर में है, लेकिन चांस नहीं, यह प्रैक्टिकल चांस नहीं लिए, तो ये वर्ष तो वो भी आपको लेना देंगे कि आपको तो आपने बताया ही नहीं कैसा भी कर सकती है। इसलिए आप चांस देने वाले बनो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Joke.

ശ്രേഷ്ഠപ്രാലവത് ചമാക്കാക്കത് ദുഷ്ടർ.

见。

No.

sarva kasanoko. Chamakarniki. Chabiel.

сватба. Чек карте жам. Арча бика номер

Chamito Hernández.

Profitieren. Dritte Yes.

0: निश्चित अनुभव करेगा।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: तो अभी बाप दादा आज का या जब तक फिरा ना हो तब तक का होमवर्क देते हैं कि कभी भी किसी को आत्मा रूप में देखो तो वर्तमान संस्कार के रूप में नहीं देखो, आत्मा का तो आत्मा को निजी संस्कार आत्मा के जो है उस निजी संस्कार के रूप में संबंध में भी आओ और दृष्टि में भी उसी दृष्टि में देखो तो ये जो विघ्न पड़ते हैं जिसके कारण पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं आती है तो अभी वृत्ति बदलेंगे, दृष्टि बदलेंगे समाप्त हो जाएंगी। किसी की क्या भी देखते हो, बाप दादा ने पहले भी कहा तो सदा आप ब्राह्मण परिवार का एक एक का फर्ज है। शुभ भावना शुभकामना देना और शुभ भावना शुभकामना लेना उस संस्कार से देखो और चलो। एक और भी बात बताती है, पहले भी पता है तो कहाँ संगठन में कभी कभी परदर्शन परचिंतन और परमत के तरफ आकर्षित हो जाते अभी

पर दर्शन नहीं, ये पर काट दो, ये तीनों बहुत नुकसान देते, इसीलिए अपना स्वमान सदा ये याद रखो कि मुझ भ्रमर आत्मा का स्वमान ही है पर उपकारी। तो दूसरे सीजन में बाप दादा हर एक बच्चे में ये परिवर्तन देखने चाहते। हो सकता है हाथ उठाओ, हाथ उठाने में तो ठीक, तो क्या करना। अच्छे बाप दादा मुबारक देते हैं, एक दो को अटेंशन दिलाते रहना। क्या करना, रोज रात को सोने के पहले बाप दादा को गुड नाइट करने के पहले अपने सारे दिन का पोता मेल देना। अच्छा किया या बुरा किया, जो भी किया वो पोता मेल देके और अपने बुद्धि को खाली करके गुड नाइट करना, बाप से भी और बाप के याद में आप भी सो जाना, आपकी नींद बहुत अच्छी हो। पहले खाली करना अपने को, बुद्धि में कोई बात नहीं रखना, तो आपको बाप के रूप में सारा पोता मेल सच्ची दिल का दे दिया तो धर्म राजपुरी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सच्ची दिल पर साहेब राजी हो जाएंगे। तो वर्क मिला।

Why?

आवश्यकता से भी ज्यादा साधनों के आधार पर साधना कम है और साधन को प्रयोग करना या कराना ज्यादा है। इसलिए आज के भाव समान बनने के दिवस पर विशेष साधन बहुत दिए, लेकिन स्वयं साधनों के प्रयोग से दूर रहे होते हुए दूर रहना
Found.

fish.

nicht an

0: věčný. Sat nám jeden nevadí. Hotivý.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाबा बाहर बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हैं, प्रकाश स्तंभ पर बैठे
2: जी। बच्ची को चक्कर लगाए तो कहाँ कहाँ रही है, लेकिन बाप दादा उन्हों Yeah.

خوشه.

0: उसके लिए।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

слепка не щекаром.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अच्छा लगता है वो मंग है, लेकिन बातें छोटी छोटी बातें रुकावट डालती अभी इसको मिटाने की कोशिश करूं। सोचते भी हो आगे से नहीं होगा, लेकिन फिर भी हो जाती। अभी तक के रिजल्ट में जो सोचते इतना अच्छा उठाते हैं जो बाप दादा खुश हो जाते हैं। अच्छा है तो बाप दादा साथ है तो हाथ भी साथ देते हैं।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Yeah।

सभी के दुआओं से

स्वरूप हो, सच्ची सेवादारी हो, स्वार्थी सेवा नहीं। एक होता है कल्याण की भावना की सेवा और दूसरी होती है स्वार्थ से मेरा नाम आ जाएगा, मेरा फोटो आ जाएगा अखबार में, मेरा टीवी में आ जाएगा, मेरा ये हो जाएगा। कई साधन ब्राह्मणों में नाम हो जाएगा, ब्राह्मण की बहुत आगे रखेंगे पूछेंगे, ये सब भाव स्वार्थी सेवा की नहीं। जो सच्चा सेवादारी है आजकल के हिसाब से शिविरों की स्थापना के बाद दूसरी थी, लेकिन इस समय के प्रत्यक्षता के हिसाब से सेवा आपके पास आएगी, आप सेवा के बिचारे नहीं, आपके पास सेवा को तो जन के आएगी। सेवा

सुख क्या

Apa nasuh?

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आगे के लिए अब दीवार पुरशारत कर, आगे से भी आगे जाने का दृढ़ संकल्प करो। सफलता की चाबी तो बाप दादा जो भी आज बचे आए हैं उन्हों को विशेष दृढ़ता की चाबी की। So

0: मैसेज आगे बढ़ाती।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: पाप और बच्चों का एक दिवस जन्म, यही वंडर है। तो आज आप सभी सालिग्राम बच्चे बाप को मुबारक देने आई हो, वह बाप से मुबारक लेने आई हो। देने भी आई हो, लेने भी आई हो। सात साल

Warte, warte. Sunny. Sliče nam pisat sad. Are ready, bitch.

Seul.

Yes.

0: फिर।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

awesome.

और की बच्ची।

0: Attention, Sam. Reckoning.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: संगम युग श्रेष्ठ है वो, ठीक है, हीरे तुल्य है, लेकिन ये रहम दिल विश्व कल्याणी बच्चे अपने दुखी अशांत भाई बहनों पर रहम नहीं आता, उमंग नहीं आता दुख में संसार को सुखमय बना दे, ये उमंग नहीं आता दुख देखने जाए थे दूसरों का दुख देख करके भी, आपके भाई है आपके बहने है दुख देखना अच्छा लगता है, अपना दयालु कृपालु स्वरूप इमर्ज करो, सब सेवा में लग नहीं लग जाओ, ये प्रोग्राम किया चलो वर्ष पूरा हुआ, अभी मर्सी फॉर बनो, चाहे दृष्टि से चाहे अनुभूति से चाहे आत्मक स्थिति के प्रभाव से मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो, छियासठ वर्ष समाप्त हो चुके हैं, कम नहीं है 66 वर्ष, ब्रह्मा बाप को अव्यक्त होते भी 33 वर्ष हो गए, ब्रह्मा बाप कब कब कहते भी है, कब बच्चे आएंगे दरवाजा खोलने के लिए, घर का दरवाजा साथ में खोलेंगे या पीछे पीछे आएंगे, इंतजार कर रहा तो सेवा में एडिशन करो, इससे बाप दादा गारंटी दे रही है कि थोड़े समय में अगर इस विधि से सेवा की तो आपके पास क्वालिटी की वर्षा हो जाएगी, बारिश क्वालिटी की बारिश पड़ेगी, इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, कहना ही नहीं पड़ेगा अभी ये कार्य होना है इसमें सहयोगी बनो, नहीं सहयोगी स्वयं ऑफर करने वाले होंगे, लेकिन साधारण समझा क्या करना है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने देखा जो बाप दादा ने, समय पर तो समय प्लान दिया है, वो बच्चों ने बड़े विधि पूर्वक उमंग उत्साह से किया है, कर रहे हैं। इसके बाप दादा सभी बच्चों

0: Api warzan ilia to kaplenge pap koremate pachoka tok ashatika vayu vatan dekar aur pap aur ap chan ये तो अति में जाने बिना अति के अंत नहीं होते। ऐसे समय पर आत्माओं को ये अनुभव कराओ, सिर्फ सुनाओ नहीं अनुभव कराओ कि भगवान वर्षा दे रहा। आप सभी भी यही पूछते हो ना कि ये पाप की प्रत्यक्षता कब और कैसे होगी, तो प्रभा कुमारियों तक पहुंचिए। लेकिन ब्रह्मा कुमारियों को सिखाने वाला कौन? ब्रह्मा कुमारियों का, ब्रह्मा कुमारों का दाता कौन? अभी समय को समीप लाने का समापति करनी है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।